ini baik untuk kita itu hari itu dipersaksikan untuk ikut juga kemikiran pasal ini bahasa juga pasal itu sesuai ko apa apa zona itu ibaratkan bodoh bodoh sih bahasa ini ko produk ini jangan sedih awal mula kita yuk ke zoom ini promosi hari ini ko ini juga ko tetap dapat bersama. राजनीतिक प्रसंग राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में नया नेतृत्व चयन भएको छ पार्टी सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति कसौडी मुराले निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो भने अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मतदानबाट चुनिएका छन् लामिछाने संस्थापक सभापति हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री समेत रहेका वादले सघि पनि उपसभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ 2079 को आम निर्वाचन

संबंध में नई कोलोरानी सम्मेलन को उपलब्धि का रूप में सारा परियोजना को मात्र लगानी स्वीकृत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ता पैदा करेगा देश में पहले पटक आयोजन प्रथम प्रदेश लगानी सम्मेलन में एमओयू अर्थात

ये कोई ये बड़ा ऐसा था कि जो रास्ते ये है सिटी पर में रास्ते रही है वहाँ बैलेट ही हो बहुत बेहतरीन तो फिर बहुत करप्टी

0: सेक्टर से कौशल्य अस्पताल भाषण सम्पर्क करना हार्दिक अनुरोध कर दी।
1: अस्पताल से सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा दें।
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच कैदी था।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पॉजिटिव सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा सम्पन्न ल्याब को सेवा उपलब्ध बा। प्यारालाइसिस को मुखार बिना नशा नाप बिना हाथ गोड़ा निचलना पेरा कनकला फिजियोथेरापी तथा एक थेरापी विधि बसे उपचार कैदी था।
0: नशा द्रव्य बिरामी के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपंचर थेरापी से सफल उपचार कर दे।
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैदी बा। असहाय नागरिक एक पर महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैदी बा। कोशीले अस्पताल प्रणाली बासरी शाखा 5 बासरी बर्दिया पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क।

भारत सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सर्वोच्च अनुसन्धान केन्द्रसँग पनि छ।

0: अच्छा नियमित रूप में हिडुल शारीरिक व्यायाम ने मोटू स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता
1: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनाव बाट मुक्त रहता मोटू रोग बाट बच्न सकता
0: 40 वर्ष कटे पछि नियमित स्वास्थ्य जांच गराऊ
1: चीजों पदार्थ माछा मासु कम खाऊ खाना में साग र फल फूल खाऊ
0: मद्यपान धूम्रपान सेवन न गराऊ
1: स्वस्थ रह सुखमय जीवन दिखाऊ
2: रेडियो प्रभाव एफएम द्वारा संगीत बजार की संदेश

0: Sowas haben sich mal schon das Wort noch aus, weil der Platz und der Jagd in Düsseldorf möchten es mal. Redebutabe FM Bordia sind Partit Hamas und des Bordia Kassat FM Razapur, Partit Radio Portibot FM Bordpur, Radio Hatemaru, Zaki Gau, Partit Abakimus, Elkassan und Bursar, Vidvar, Hamas und des Kapuridari, Mukim, Kessmazar, Kassus, Mose, Kalkan, Vima, Bordia, Vaski, Kukan, Animita, Vidur, Kulion, Fultes, Kassasti, Kaderige Bordia, Matan, Bordina, Bordhagit, Kassar, Ata Samama, Tara Professor Kela Pitaris, Motman Masikon Shilu, Bika Talisemia Bari Padiga Experience of Tetanata Kakum Kitaran, Tutan, Kolti Homanti, Shin Shilum Vinish Tita Maya Tipi Mandira Blokan, Oliverti Samajit Sanzal, Nay Padiga Kalat Mukitsno, Kitanga Servotsa, Alaka, Mukhera Shtar, Poreza Dahi.
1: वास्तव में नगरपालिका में नए समिति विभाग में मिला प्रधान मंत्री तीन दिन पुनर्प्राजी तालीम संचालन विभाग नगरपालिका का नए समिति का आयोजना में आज से तालीम शुरू की रखो स्थानीय महिला विभाग आदर्शन लेना की पहला स्थानीय स्तर में जो मिला परीक्षा आग बढ़ा साहित्य को क्या इसलिए तालीम का आयोजना कई क्लब पार्थवी नगर का प्रमुख तथा न्यायिक समिति का संयोजक इंदिरा चौधरी बटुलवाजी मिला पौधा क्लब मिता छिरो खानो खाना समाजमा करबे समाजमा भाइचारा का समय का स्थापित बिना हमने कैसे हुई बिना आप इन सशक्त बनेगा लाख तालीम पौधा कई क्लब नगर का प्रमुख तथा न्यायिक समिति का संयोजक चौधरी बटुलवाजी ये मैजिक तालीम के दक्षे में मिला करता मार्ग में सारे फूटा करती आगामी दिनों के तालीम पर निरंतर बनेगा व प्रतिभाजी तालीम में नौ फूटा करती इस चरण में मिला करता फूटा सौ भागीदार होगा।

0: विषय विशेष गरेर सर्वप्रथम सत्यमेव शान्तता पर्न प्रमुख होइन चिज खवाई निर्णय विषयमा सबैजना प्रश्न पारिदिनको सर्वतन्त्र सम्बन्धी विज्ञान डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य प्रति आभारी बाटी
1: मैले
2: शुक्रगार्थी बाबु।

कार्यक्रम जीवन संघर्ष शांति पार्टी आज हम सत्तर प्रतिशत महिला तत्काल कल्पना प्रार्थना विचार के विषय में संवाद करने लगे अवसर होगा श्रोता सहभागिता का विचार और सर्वप्रथम सुशांति बातचीत सुनिए

0: देखा स्वास्थ्य बच्चा विद्यालय भविष्य इसमें काम करो स्वास्थ्य बचाओ
1: अपने खेती का

0: करें और न बिना बिन साग सब्जी फल फूल सही पर खाना ले बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना सब समझ भी बोले संभव इस संसार में क्या करिए।
1: किशोरी मुखर्जा कुमार रात

खाई जंक फूड कम करी सर्कुलेट कर खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का डर हो।